धरती माथि निसमाउ पानी झे चन्दन माथि निहराउ तू बोझे धरती माथि निसमाउ मत धातु मात्र हूँ इन मोती हौ मत फूल पुछ।

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
1: बुलबुले FM 103.4 मेगाहर्ट्ज।